0: चाय करें,
1: चाय चाय।
0: चाय दी चाय।
2: नाश्ता ग्राम, नाश्ता ग्राम।
3: चाय चाय चाय वाली चाय चाय चाय चाय वाली चाय ग्राम।
4: We are occupying the bodies of Earth people.